0: नमस्कार आमै।
1: भलो भलो हुनुपर्ने, धेरै पछि के आज त?
0: अब बालाई दमले लग्यो, माया गरेर ल्याकिरहनेले पनि छोडेर गई, दुःखमा थिए आमै।
1: ए आज के सुनाउँछस् त?
0: दुःख केही कथा सुनाउँछु।
1: लु सुना सुना।
0: ल